0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 7 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबी पर्सनल मोबाइल नम्बर मि उनी यो टेलिकमर बे अफिसरी आएर ब्लक लै र खलखाई
1: अनि बैंगरी
0: बैंगरी चर चाहिँ तले लगपर्दी
1: सम लगपर्दी न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न ब्याङ्क दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरुइन योरी थनी जग्या सचेत तल परिम
0: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: ब्याङ्की खैमज बिले क्योदे एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खाई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
1: समिच्यो चौदा क्या में बोधे लोटी पर दीरो बैंक ने विवरण पी विषय मुई खाता लिखे हमरो खै खै बहु कोई लोटरी भर दिलो
2: आंगी समझो लोटरी पर दिमो छाता ही गुदी
1: भर दी आ भर दी लोटरी खाली पर दिम बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खने बनी खै विषय खै मई विश्वास आलन फोने खाले पनी आप ही विवरण खै मई आपिल खबर बनी वित्तीय संस्थे के पासवर्ड पिन खै मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जनहितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले दाजी मरी बुझी मरी ब्याङ्गै न आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललन खैबै बिनी लिङ्क खुल्दिउ भन्दा उइसो सु खन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिब वेबसाइट न युआरएल चेक लन आछाबा घटना तल आपिबै लागि समय समय री आफै न पासपोर्ट फेर दिल परिम नुई तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लन
0: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज